0: चाचू हमारी को आज्ञा ले लो।
1: तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ की माँ काम ना कर सको। हाँ
2: तो कटी तुम्हारे सच बोलते।
1: अरे सच्ची वो पर बोला गया ना है। अच्छा तुम्हें क्या कर रहे हो
0: प्यारे? आप हमारी श्यामा जी की मुदरिया को दे जाओ और पधारो।
3: मैं 6 पल में खोल दूंगी और 6 पल में बांध दूंगी प्यारे।